तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं। सुनो किमें गले हैं, कहते हैं

अपने जीवन दे विच्चों एक गलत रस छोड़ोगे अते वाहिगुरु दा रस जदों अपने अंदर पाओगे, वाहिगुरु दे रस ने इस काया नू गली हुई काया नू हील करना शुरू कर देना है। साध संग मिल हर रस पाया कहो नानक सफल ओ काया, कहिंदे ओही काया जड़ी है दोबारा सफली हुंदी है जिसनू साधु दी संगत प्राप्त हो जाए। तो अज दा कीर्तन इत्थे समाप्त है क्योंकि समा समाप्त है। आप जी ने हुण तक दे जो कीर्तना दे विच विचार सुनी है शरीर दे संबंध दे विच, उस दे विच दोने पहलू आप जी दे सामने रखे हैं। एक पहलू तो जो इसकी असलियत है, दुर्लभ है, मंदिर है, सरोवर है, रब की कामणी है। पर दूसरा पहलू, अगर असी अपने अंदर आ तमाम जो अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, लालच, हंकार इत्याद रखते हाँ, तो फिर इस काया नू महाराज जी कहते हैं, कहते हैं हर बिसरत तेरे गुण गलिया, फिर तेरे सारे गुण गल गए हैं। और गली हुई काया, तमाम काया गलियां पईयां हैं, इसे करके एक दूसरे तो किसी नू कोई खास खुशी या आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। गले हुए तो किसी नू की कुछ मिल सकता है, की आनंद प्राप्त हो सकता है। भूल चुक की खिमा अपनी काया नू साधु की संगत द्वारा हरी

संत बाबा तरसी महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं मजदूरां वाले कपड़े पा ले एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हां करो अठ घंटे काम करना पड़ेगा ठीक है करांगे मजदूरी तय हो गई जितना काम अठां घंटिया विच करना सी चौं घंटिया विच कर दिता एक बारी प्यार नाल बोलिए ठेकेदार ने बुला के आख्या ए फड़ो पैसे ते जाओ

आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदरूप असूत अंगहीन अभंगनातम एक पुरख अपार सर्वलायक सर्व घायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनभेख सर्वशास्त्र न जान।

अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहो साहन साहो राजान राजभानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंग कालान काल अनभूत अंग अभंग गात्मिता पार गुणगान उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निरकाम अत दुत प्रचंड

के सर्वत्र भवन के सर्वत्र देश के सर्वत्र भेष के सर्वत्र राज के सर्वत्र साज के सर्वत्र दीन के सर्वत्र लीन के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र बाहो के सर्वत्र देश के सर्वत्र भेष के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सोख के सर्वत्र पोख के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र भेष।

मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रभंज अनघन प्रणाम मुन मनसलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस व्यंत अनुभव अनास तिर तुर तरास

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी दे पावन पवित्र वचन, जो कि बहुत ही अगम्य रबी विचार है, सानू महाराज जी के शब्द द्वारा सुनने का एक मौका प्राप्त होया। जो आप जी की सेवा च गुरु महाराज जी का महान सिक्ख्या भरिया उपदेश दास ने अर्ज करना है, उसके वास्ते मेरी प्रबंधक सज्जना पहले ही बेनती है कि जो पिछों बच्चों की आवाज आती है उसका सही इंतजाम करन, ताकि उस थॉट प्रोसैस के जुड़ी हुई संगत नूं किसी भी किस्म की कोई जो है वह डिस्टर्बेंस ना हो। आप जी ने इस शब्द की जो थीमैटिक लाइन है वो बार बार सुनी है, मन की मत त्यागो हर जन, मन की मत त्यागो हर जन, मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठिन। सतगुरु गुरु रामदास साहिब जी महाराज सानू साडे जीवन दे विच्चों कोई अजेही चीज छोड़ देण नू आख रहे हन जो कि सानू सब तो ज्यादा प्यारी है। कोई अजेही चीज छोड़न नू आख रहे हन जो कि साडी जिंदगी दे विच तमाम फिक्कापन लैके आंदी है, दुख लैके आंदी है, सारी जिंदगी दे विच जो जहर घोलदी है उस नू छोड़न नू कह रहे हैं। पर जिस वस्तु नू महाराज जी छोड़न नू कह रहे हैं वही वस्तु है जो सिख बहुत मुश्किल दे नाल छोड़ सकता है। वही वस्तु जिस चीज नू महाराज कह रहे हैं ना छोड़ दो, वही साडे लिए छोड़नी सब तो ज्यादा कठिन। गुरुदेव जी आप ही इस गल नू जानते हैं, इस करके वो कहते हैं, पहला सुजेशन है कि मन की मत त्यागो हर जन, पर नाल ही नाल क्योंकि वो जानते हैं, वो कहते हैं दिस इज नॉट वेरी ईजी थिंग टू डू, दिस इज नॉट सो सिंपल थिंग टू डू, यह बात कठिनी, ये बात बहुत कठिन है। क्योंकि अगर असी अपने मन की मत ही छड़ दिती तो फिर साढ़े पास रह गया, कुछ भी ना रह गया। हरेक इंसान की अपनी मत है,

तो हम पक्षी सुने हैं अपनी मन भी मत में त्याग दे। अगर अपने आप में सोचते हो कि सहने हो तो वो एक गलत फहमी है। फिर महाराज जी क्यों करिए, क्यों करिए? तो कहेंगे गुरु की मत तू ले आने। हम साथ गौर न सुनो, इतने शब्द महाराज जी ने वर्त्या है आने। तो आने शब्द जरा निके निके बच्चे बैठे ने इन्होंने वर्ते। सुखमी साहब जो महाराज जी ने उचारी जी तो सुखमी साहब के लफज आने जरा उन्होंने निके जहे न्याण लिये जो 5-7 साल की उम्र में सी ये शब्द उन्होंने लिखा से उन्हें बेचारे भोले पालन के भी समझ नहीं सी आने। तो सियाने फिर आने कौन हैं? आने वो हैं जिन्हों के पास ज्ञानक नहीं है पर उन्होंने वहम है ज्ञानक। ये जो ग्रोन न्याणे हैं ना तो उन्होंने आता है ग्रोन न्याणे। जो ग्रो हो गए हैं लेकिन हम हाले न्याणे ही अपने मन में भी नहीं हम कि अभी हाले न्याणे हैं। वो तो कोई कोई गुरसिख अजिहा होता है जो आखे हम बार क्यों गुरसिता हैं जो मत समझाए। तू गुरु पिता है अभी अच्छे अभी बालक हैं हाले। लेकिन कौन कौन प्यार है कि अभी बालक हैं? जब इंसान कहता मैं तुझे बच्चा समझ दो मैंने न्याणा समझ दो मेरे तौले आ गए हम तो मैंने तुझे समझाने की कोशिश कर दो। जिस तरह के तौले आते नाल अकल आती है और तो कुछ संबंध ही नहीं उसके नाल। तो साथ संग जी हुण तक आप जी ने यह सुनिया है गुरु बाबा जी का सुनेहा कि अपनी सारी मत अपनी सारी सियाणप क्योंकि साढ़े पास नहीं है छड़ दो। तो कहते हैं गुरु की मत तू ले आने आने गुरु की मत लै क्योंकि भगत बिना बहुत डूबे सियाने बहुत बड़े बड़े सियाने जोड़े हैं वो गुरु की मत तो बिना भगती नहीं आती। बिना भगती तो बहुत व्डे व्डे सियाने जो हम वो अपनी सियाणप के बीच ही डुब जाते हैं अपनी सियाणप के बीच ही डुब जाते हैं। इस करके प्रेम नाल आओ इस पंक्ति में गाओ उपरंत अगे चल देंगे।

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे हैं। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन ज्वाइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू and I have broken with all others. Jeh jeh jaun tahan teri seva. Tum so thakur aur na deva. Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord Master than you, O Divine Lord. Tumre bhajan kate jam phansa. Bhagat het gaavai ravidasa. Meditating, vibrating upon you, the noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhve, tum na toro, to hum nahi tore. Tum syon tor, kavan syon jore. Raag sorat, taal, choti tin taal, 16 beats.

सेवा प्रवान करनी आपकी दुनिया की कम का जन उचार की सूरत इस वे गुरु दरबार की हाजरी भरी आप अमृत ने कीर्तन रागा दे गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा अनुसार गुरु अर्जन साहब की मर्यादा अनुसार सरवण किया है स्वतंत्रता दे आओ अंत दे सरबत माए भाई कितने गुरु चरणा च बैठे हो छोरिया की अरदास बेनती दो दिन करनी है सतगुरु दात्या की हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साडे छोरिया विच अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजिया कोई रिश्ता खाली न जाए।

दुई गुर साजे करासन रिठो चाव, दाता करता तू तू सेवे करे पसाव, तू जानो ही सबसे दिल से जिंद को कार्यासन रिठो चाव।

अवस्था है एक तू तू तू सीखने अंत में तू जुड़ गया क्योंकि तू प्राप्ति है मैं भी छोड़ा है। तू वाहिगुरु जी प्राप्ति है तू तू करता तू तू करने वाला उस तू विच जुड़ जाता मैं विच बोलने वाला विछड़ जाता मैं विच विछड़ ए होमे का जिहड़ा कर्म है इसनू वाहिगुरु तू विछोड़ देंदा है फिर मिलदा किस तरह है उसकी रहमत नाल मिल जाता है। रहमत द्वारा की मिलना है फिर अपना आप बजा के मुका के पातशाह मैं तेरा तेरा नदी पहाड़ा तू चलती है जंगलों विचो लंघती थलों विचो लंघती किथे चली गई समुद्र कोल चली गई अगो समुद्र भी नदी नू लैण वास्ते जे नदी चलती है ना समुद्र वाली अब प्यारी सात संगत चौबी घंटिया विच एक वेरी समुद्र दे अंदर भी ज्वार भाटा आउंदा है तो उस वेले समुद्र जिधरों नदी का पानी आउंदा है उधर समुद्र तुर पैंदा है।

राग गौड़ी दखनी विच ऋषभ धैवत कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार धैवत सुर वर्जित हैं। इस दी जाति औडव संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा सवेर दा पहला पैर है। इस राग विच नाम मिले चले मैं नाल शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह करीर।

कूड़ पर जा कूड़ सर संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खपोए खा।

थोड़ीदान महंडा तो लिखा तो मिले तमस्त कलाई है कूड़ा लाल छड़ी है हुक्म नाल त्याई है फल तवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो